अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर

गर्भ भी वह दान कर दे। पर भगत जी कहते हैं कोई बनास तप करे तीरथ से मरे हवन कुंड अपने आप नू साड़ दे, असमेध यज्ञ करे सोना ते गर्भ।

बदलावन दे। मैं ते करमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने

पलकते गया पाताल नानक, नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना, मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक, कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के, बनया सारयां दा सांझीवाल।

शीश दिया पर सिर ना दिया। सच जिस दे अंदर सच वस जाए वो सच नू कुर्बान नहीं होण दिंदा, अपने आप नू कुर्बान कर जाएगा। उसकी जमीर नू कोई खरीद नहीं सकता, उसके ईमान नू कोई डुला नहीं सकता। पितर बाणी च क्या है, जे सच की छुरी होवे आखो वाहिगुरू, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे। मैं फिर बेनती करा, जे सच की छुरी होवे सच की काती, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे, ते गुर शब्द की साण ते तिखी कीती होवे आखो वाहिगुरू। फिर गल समझ ली, सच की छुरी होवे ते सच दे लोहे की बनी होवे, गुर शब्द के साण ते तिखी कीती होवे, परमेश्वर जो बेअंत गुणा वाला है उसके गुणा की म्यान विच रखी होवे आखो वाहिगुरू। ऐसी सच की छुरी का काओ जे लग जाए ना, अंदरों लोभ रूपी खून बाहर कढ देंदा आखो वाहिगुरू। उसके अंदर लोभ नहीं रहिंदा। बाकी कुड़ियारां दीआं छुरियां वेखियां ने, वो तो अंदर जहर भरदियां ने, अंदर ईरखा भरदियां ने, अंदर दुबदा भरदियां ने, पितर जीवन नू नरक बनाउंदियां ने, अंदर जहर घोल दिया ने। उसके नाल तां मनुख आत्मक मौत मरदा है, जमीर विक जाती है, तकदीर विक जाती है। जिसकी जमीर विक जाए समझो तकदीर विक गई। अन्न ना खाइए शरीर मरदा है, नाम ना जपिए जमीर मरदी है। जिसकी जमीर मर जाए उसकी तकदीर मरदी है। जे कोई अपनी तकदीर नू बढ़ा सकता है तो जमीर उच्ची करके, जमीर उच्ची हो सकती है परमात्मा दे नाम करके, सच करके आखो वाहिगुरू। कहिंदे जिन्हां दे अंदर सच दी छुरी सच की काती, सच दी सार सच दे लोहे तो बनी हुई, गुर शब्द दे साण ते तिखी कीती हुई, गुर शब्द दी कमाई नाल परमात्मा दे गुणा दी म्यान विच रखी हुई, वो तो वच जाए ना। ऐसा अणियाला काओ है, अंदर लोभ रहने नहीं देता आखो वाहिगुरू। उसकी जमीर नू कौन खरीदेगा, उसके ईमान नू कौन खरीदेगा, नहीं कोई खरीद सकता। वो अपने आप नू तां कुर्बान कर देगा, लेकिन सच नू कुड़ियारां पिछे कुर्बान नहीं करता आखो वाहिगुरू। प्रमाण सामने आउंदा है, नबी खां ते गनी खां शरदालू साहिबां दे उच दा पीर बना के लैके गए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। रस्ते च पुछण वाले ने पुछया कौन ने।

वान होएगा अकू आएगा। कहते सच कहिए साढ़े अंदर इतनी आत्मक बल मिले असी कदे भी सच नू इना कुड़ियारा पिछे कुर्बान नहीं कर सकते। अपने आप नू तो कुर्बान कर देंगे लेकिन सच नू कुर्बान नहीं होने देना। दूसरी तरफ गंगू भी बोलिया सी मैं सच बोलदा साहबजादे सतगुरां दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे ते उन्हां दी माता मेरे कोल हन। आखू वाहिगुरु गंगू बोलदा मैं भी सच बोलदा धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी माता ते साहबजादे मेरे कोल आ वेखो गंगू सच नूं कूड़ियां पिछे कुर्बान करन लगे। जिन्हां दे अंदर कूड़ दा न्याय होएगा उन्होंने सच नूं कुर्बान करना है कूड़ पिछे। आखो वाहिगुरु पर जिन्हां दे अंदर सच है सचो सच है। आखो वाहिगुरु जिन्होंने गुरशब्द की कमाई कर करके सच नूं परतख वेख लिया। आखो वाहिगुरु गुरशब्द की करड़ी कमाई करके उन्होंने दूजा पाव ठग नहीं सकता। आखो वाहिगुरु वो अपने आप कुर्बान हो जाएंगे सच कमा कुर्बान हो जाएंगे। एक होर बेनती करते सच सुनना बहुत औखा है। आखो वाहिगुरु बहुत ही औखा सच अंदर कुड़ियारां दे अंदर अग लगा दिंदा। वो सच दे सेक नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि एको एक तां सच है जिस दे तप ने अंदर परम जालणे हन। आखो वाहिगुरु एको एक तां सच है जिसने अंदर ईरखा नूं जाल देना। पर कुड़ियार दी हमेशा कोशिश रही है कि सच्यार दी जबान नूं जो सच बोल रही है किसे ना किसे ढंग दे नाल बोलणों बंद किया जाए। आखो वाहिगुरु ए आरंभ तो ही यतन दे है। वो हर हीले वरतदा है हर यतन करदा है पर जदों कोई हीला सफल नहीं हुंदा तां वो फिर सच्यार दी जबान नूं सदा बंद करन लई उसनों फिर शहीद कर देंदा। आखो वाहिगुरु वो भुलेखे विच आ जांदा। उसका सब तो वड्डा भुलेखा हुंदा है भुलेखा की है कि शायद सच्यार दी जबान बंद हो जाएगी उसकी शहीदी करके। पर उसनों भुलेखा है कि यह सच ते सच दी बोलन दी बुलंदी अंदरों सच दी प्रतख शक्ति नूं कोई अज तक बंद नहीं कर सकिया। आखो वाहिगुरु मैं एक होर बेनती करां शहीद की है ते शहीदी की है ये किसनूं कहिंदे ने। आखो वाहिगुरु शहीद किसनूं कहिंदे ने ते शहीदी किसनूं कहिंदे ने। एक दा अर्थ है गवाही एक दा अर्थ है गवाह। असीं कचहरियां विच जाने हां ते साड़ियां शहादतां हुंदियां ने। आखो वाहिगुरु असीं कहने अज मेरी पार्टी दियां बंदियां दियां शहादतां हन कल दूसरी पार्टी दे बंदियां दियां शहादतां होणगियां। इस दा अर्थ की है अज मेरियां गवाहियां हन कल दूसरी पार्टी दियां गवाहियां हन। पर कदे तुसीं कचहरी देखिया की हुंदा जदों जज दे सामने कोई शहादत देंदा की कहिंदा मैं अपनी धार्मिक पुस्तक नूं हाथ रख के मैं अपने रब नूं अपने इष्ट नूं मंदा होया है गल कहना मैं सच बोलांगा सच दे सिवा होर कुछ नहीं बोलांगा। आखो वाहिगुरु मैं सच बोलांगा सच दे सिवा होर कुछ नहीं बोलांगा इसका मतलब की है कि शहादत होंदी ही सच लई है। सच नूं प्रगटाउण लई ही शहादत हुंदी है। यह ठीक है अज कुड़ियारां दी दुनिया विच
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवन उपदेश देंदे हुए यह गल समझ आते, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसी मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया, वह तो कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसी चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं, असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर किरपा बख्श, तुसी करो किरपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर किरपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे साहब।

मन्ना मैं रूप मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन ना कुल टंग ना कुल चंगी है ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने वस कर ला मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

ए माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तो ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

0: करेंगे।
1: हम पापी तुम पाप खंडन।
0: हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सब नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुर ख्याल दे

अवगुण हारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है। कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनु नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां की संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा। साच नाम आधार जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि ये गुरु की शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नू आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगी भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे कम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे कम नहीं आउंदे।

साकत बेसुआ पूत ना नाम बिना सिमरन दे। आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा नां नहीं जानदा। उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है तां की दसेगा। आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है। बिन सिमरन

पाया जाए। हर हर नाम, हर हर नेम ऑफ गॉड नाम निदान है, इन दैट इज द ब्लिस। गुरुमुख पाया जाए, द गुरुमुख इज गिवन, द ब्लेसिंग्स आर शावर्ड अपॉन द गुरुमुख। वी हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ टू हैव द गुरु एज अ गुरुमुख। द ब्लेसिंग्स ऑफ वाहेगुरु आर जस्ट शावर्ड अपॉन अस, दैट्स अ ब्लेसिंग। हर हर नाम निदान है, गुरुमुख पाया जाए।

चार जकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश के नाल अगे वधदे हुए जकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच जकारा छड़ना है, ताकि यह साड़ी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 की लड़ाई लगी तो फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तो उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियों नूं गजा पाई, कलगियां वाले का जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौकी ते। और यह हकीकत है, हिंदू कैप्टन हुए फौजी फिर वापस आए इस चौकी ते आके फिर हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा किया। आओ, ये कलगियां वाले की बख्शिश की नाम जकारा सा

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाव, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चिया नू जरा इना दी गल्ला दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।